नमस्कार है, आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ यानी कि मेरे साथ MGM 90.8 FM। और इस वक्त ना तो हम आपकी गाने की फरमाइश पूरी करते हैं, तो आज हमारे पास गाने की फरमाइश आई है पवन काले जी की तरफ से।

फिल्म मेरा गांव मेरा देश जो कि 1971 में आई थी, इस फिल्म से ये गाना है मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अपने आप में ना तो ये गाना एक अलग ही एहसास समेटता है और इस गाने को गाया था लता मंगेशकर जी ने अपनी जादुई आवाज में। एंड यू नो व्हाट, इस गाने के बोल मशहूर गीतकार आनंद बख्शी साहब की कलम से निकले थे और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, जो कि बहुत मशहूर जोड़ी थी। और ये गाना फिल्म के उस स्पेशल मोमेंट पर आता है जब एक्ट्रेस ना तो कश्मकश में होती है कि लीड रोल में होते हैं धर्मेंद्र जी, उनको क्या कहा जाए, उनको कैसे बचाया जाए इन गुंडों की चाल से। तो आइए फिर दिल थाम के सुनिएगा खूबसूरत ये बेहतरीन सा गाना मेरा गांव मेरा देश इस फिल्म से आपकी फरमाइश पर। और हाँ, आपकी भी अगर कुछ फरमाइश हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर 9359320080।

0: रंगभूमीच्या कलाविश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे, मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026. नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमांची खास मेजवानी. या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, एमएचजी सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग. मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह एमजीएम परिसर छत्रपती संभाजीनगर. तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे.
1: स्ट्रेस, एन्झायटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: Let's talk about मौसम का अपडेट. तो बात कुछ ऐसी है कि कहा गया था 15 अगस्त के बाद अच्छी खासी बरसात होगी, लेकिन 15 के बाद 20 अगस्त तक आ गया, बट बरसात ठीक ठाक कुछ नजर नहीं आ रही है. हाँ, दो दिन से शहर में हल्की हल्की सी रिमझिम बरस रही है, तो लग रहा है कि बारिश फिर से आ सकती है. अब मैं नहीं, हवामान विभाग असं सांगतंय की येणाऱ्या काही दिवसात आपल्या शहरात म्हणजे आठवडाभरात रिमझिम पाऊस असू शकतो, आणि ऑगस्ट एंड मध्ये आणि सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जोरदार पावसाला सुरुवात होऊ शकते असं सांगणं आहे हवामान विभागाचं. अँड बरसात कमी इस वजह से शहर का टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत क्यों ना हो 1-2% बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है. एंड 7 जून से लेकर आज तक अपने पूरे शहर में 368 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि पिछले साल से थोड़ी कम ही बारिश है, क्योंकि पिछले साल इस वक्त तक 533 मिलीमीटर तक बारिश गिरी थी. सो देखा जाएगा कि आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा. तब तक स्टे ट्यून्ड.
1: Only on MGM 90.8.

0: wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: अलग अलग फ्रॉड्स के हमने नाम सुने हैं, लेकिन कभी आपने सेल्समैन वाला फ्रॉड सुना है क्या? देखो यार, मार्केट में साइबर फ्रॉड है, ओटीपी फ्रॉड है, ईमेल वाले फ्रॉड है, या किसी ऐप के जरिए होने वाले फ्रॉड है, लेकिन आजकल अपने शहर में हो रहा है सेल्समैन फ्रॉड। इसमें क्या होता है, एक सेल्समैन आपके घर पर आता है एक कंपनी का प्रोडक्ट लेकर, और आपको समझाता है कि हमारे कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा है, आप लीजिएगा, आपको इसमें फायदा ही होगा। और जब आप मना करते हो लेने के लिए तो कहता है कि ठीक है, आप कुछ दिनों तक सोचिएगा इस बारे में कि हमारा नंबर है और आपका भी नंबर हमें दीजिएगा, अपडेट लेने के लिए हम आपको कॉल करेंगे कुछ दिनों के बाद। वो कहता है कि एक आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, और वहां पर ही भाई सबसे इंपॉर्टेंट गेम खेला जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए हम वो बंदे को नंबर दे देते हैं, हमें लगता है कि भाई सेल्समैन ही है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, आज नहीं कल या परसों हम सोचकर बताएंगे। फिर रजिस्टर करते हैं, और जिस तरीके से फिर एक ओटीपी आता है और ओटीपी वो बंदा मांगता है और सीधा ओटीपी चला जाता है बैंक में, और उसके बाद जो होता है हम सभी को पता है, अपने बैंक से पूरा के पूरा पैसा खाली हो जाता है। तो ये एक फ्रॉड आजकल अपने शहर में बहुत बढ़ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सेल्समैन फ्रॉड। तो देखो, आपके घर पर बिना तो कोई सेल्समैन आए तो भाई देखिएगा, प्रोडक्ट लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मत शेयर कीजिए। और स्पेशल अगर वो ओटीपी मांग रहा हो ना कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद, तो समझ जाएगा कि भाई ये सरासर फ्रॉड है ही, क्योंकि कोई भी सेल्समैन हो उसे ओटीपी की क्या ही जरूरत, अगर उसे फॉलो अप के लिए नंबर चाहिए तो नंबर लेना भाई, ओटीपी क्यों चाहिए। तो समझ जाएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसे सेल्समैन से थोड़ा बच के रहिएगा। ऐसा मैं भी नहीं, खुद साइबर डिपार्टमेंट कहता है कि ऐसे फ्रॉड अपने शहर में बढ़ रहे हैं। तो बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि सस्ती वाली चीज खरीदने जाओगे तो फिर बड़ा पछताओगे, इसलिए बी सेफ बी केयरफुल, वरना एक ओटीपी से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, समझे?
1: ओनली ऑन MGM 90.1।

जहां देखो वहां पर बस हमें आज के डेट में फ्रॉड नजर आता है। एग्जाम फ्रॉड, खाने का फ्रॉड, पानी का फ्रॉड, पैसों का फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, सब जगह बस फ्रॉड फ्रॉड और फ्रॉड। और आजकल तो भाई रास्तों का भी फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड को लेकर हम सभी लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी हो चुका है। मार्केट में जितने मोबाइल लॉन्च नहीं होते उससे ज्यादा तो फ्रॉड आजकल लॉन्च हो रहे हैं, और वो भी साइबर फ्रॉड दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर ही रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि एक गलती हमारा पूरा बैंक अकाउंट खाली करवा सकती है, एक क्लिक से पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। और ऐसे केसेस ना तो अपने शहर में भी बहुत सारे हो गए हैं। पिछले 2-4 महीने से ना तकरीबन किसी के अकाउंट से 5 लाख, 30 लाख, 8 लाख ऐसे रुपए गायब हो गए। गायब मतलब क्या, एक क्लिक के ऊपर से पूरा पैसा खाली होता है। और अक्सर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट अवेयरनेस के जरिए बताते रहते हैं कि यार भाई किसी को भी अपना OTP मत देना, अननोन कॉल पिक मत करना। और हाँ, वो एक मार्केट में चल रहा था फ्रॉड, ऑनलाइन जेल का समथिंग ऐसा नाम था उसका, जिसमें आपको वीडियो कॉल के जरिए कैद किया जाता है, वो टोटली फ्रॉड था। एंड अब ये फ्रॉड इतने बढ़ रहे हैं तो मार्केट में एक और फ्रॉड आ गया है, और ये अपने शहर छत्रपति संभाजीनगर में भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दैट्स कॉल्ड सेल्समैन फ्रॉड। अब एग्जैक्टली सेल्समैन फ्रॉड क्या होता है और इसके शिकार भी कुछ लोग हो गए हैं, तो इसमें एक गलती बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और वो गलती है OTP वाली। और हालांकि ये सेल्समैन फ्रॉड क्या है, किस तरीके से हो रहा है बताऊंगा मैं आपको, लेकिन कुछ ही देर में। तब तक के लिए जरा आप भी सोचिएगा कि यार ये एग्जैक्टली सेल्समैन फ्रॉड होता क्या है, मैं तो बताऊंगा, थोड़ा इंतजार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: बाय वन गेट वन फ्री होय होय खरं एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादा श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा या कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री.
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
2: द्वारकादा श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
1: ही ऑफर 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, फिडगो 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
4: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
4: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: फिलहाल ट्रैफिक में थोड़ा चेंज किया गया है श्रावण मंथ के लिए। तो बात कुछ ऐसी है कि श्रावण मंथ में कृष्णेश्वर टेम्पल और अपने भद्रा मारुति यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं और इस वजह से ना तो रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए प्रशासन ने ऐसा डिसीजन लिया है कि 13 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक एलोरा और खुल्दाबाद रूट पर हेवी व्हीकल्स के लिए नो एंट्री रहेगी, जैसे ट्रक टेम्पो इन जैसे गाड़ियों के लिए नो एंट्री है। सो जिन हेवी व्हीकल्स को ना तो एलोरा जाना है, खुल्दाबाद जाना है, तो कन्नड़ और शटनापुर फाटा, माड़ीवाड़ा, कासाबखेड़ा फाटा इस रूट से वो जा सकते हैं एलोरा या खुल्दाबाद की ओर। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि श्रावण मंथ में ना तो स्पेशली सैटरडे को खुल्दाबाद और मंडे को एलोरा में बहुत क्राउड होता है, इसी वजह से वहां पर ट्रैफिक जाम ना हो, तो लोगों को कुछ परेशानी ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, इस वजह से डिसीजन लिया गया है 13 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक ऐसा रूट चेंज रहेगा। तो यही था ट्रैफिक वाला कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट। स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: हमारे हेल्थ से जुड़ी ना तो एक ऐसी बात है जो कि सभी को पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। देखो यार, HPV वैक्सीन के बारे में कहीं ना कहीं तो हम सभी ने सुना होगा। अब एग्जैक्टली क्या है HPV, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा, थोड़ा गलत भी होगा तो आप थोड़ा एडजस्ट करके लीजिएगा। सो खैर, HPV वैक्सीन एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है और इसके कुछ टाइप्स आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसे कैंसर को भी बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन एक गुड न्यूज क्या है पता है कि HPV वैक्सीनेशन के थ्रू इसे प्रिवेंट करने में मदद मिल सकती है। जी हाँ, और ये जो HPV वैक्सीन है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अब कंपलसरी हो चुका है कि हर लेडीज ने वैक्सीन लेनी ही चाहिए। तो यार, HPV वैक्सीन क्या है, ये किसके लिए रिकमेंडेड है, वैक्सीन लेने के सही उम्र क्या है और इसको लेकर पेशेंट के माइंड में कौन कौन से डाउट और मिथ्स है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर के बाद डॉक्टर धनंजय घुगे सर, कैंसर सर्जन, मराठवाड़ा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो इनसे हम जानेंगे कि HPV वैक्सीन क्यों इम्पोर्टेंट है और तो सर के जरिए हम जानेंगे कि HPV वैक्सीन कितनी इम्पोर्टेंट है। बाय द वे, अगर आपके माइंड में इस वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल हो के तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, सुनते सुनते हमारा इंटरव्यू। सो स्टे ट्यून
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 9067612000.
2: बाय वन गेट वन फ्री होय होय खरं एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
3: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री.
2: म्हणजे स्टाईलही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
3: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
2: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.
4: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
5: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
6: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
5: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
6: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: बाय वन गेट वन फ्री होय होय खरं एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री.
1: म्हणजे स्टाईलही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
2: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
1: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्यामकुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
5: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
6: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
5: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
6: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर.

0: मुझे अदनान।
1: और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का। हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे सिर्फ पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मेरी और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरा गाँव मेरी धरोहर। स्टे ट्यून्ड
0: with RJ Adnan.
2: All is well with RJ Adnan.

0: से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.
5: बाय वन गेट वन फ्री होय होय खरं एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर्स।
6: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
5: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
6: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
5: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, फिट गो 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।
7: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
8: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
9: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
8: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
9: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: मालिक सुनो, स्वराज जहाँ माता जन्म सिद्धा का है, क्यों मी मिलो नरस विंगले सर का जड़ों के ठिकाना रहेगा। ऐसे खड़े सवाल मंडले चतुरुंगा गीता रहस्य ग्रंथ से लेखन सार्वजनिक कल चौचौ स्थापना करना तेरे टांगोले से नेते
1: एडी संचार डोक्या मध्य पेटला कसा दिवा मेंटर वाचा गोला मधली काढली कोणी हावा जेम्स वाची किटली उकरून शोध कसला लागला सांग
0: बबी इंजिन
1: शाबाश।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ

0: शहबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: हर दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम तो

हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, अन्य अन्य अन्य प्यार हो गए।

घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

0: प्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स। इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर। और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: अलग अलग फ्रॉड्स के हमने नाम सुने हैं, लेकिन कभी आपने सेल्समैन वाला फ्रॉड सुना है क्या? देखो यार, मार्केट में साइबर फ्रॉड है, ओटीपी फ्रॉड है, ईमेल वाले फ्रॉड है, या किसी ऐप के जरिए होने वाले फ्रॉड है, लेकिन आजकल अपने शहर में हो रहा है सेल्समैन फ्रॉड। इसमें क्या होता है, एक सेल्समैन आपके घर पर आता है कंपनी का प्रोडक्ट लेकर, और आपको समझाता है कि हमारे कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा है, आप लीजिएगा, आपको इसमें फायदा ही होगा। और जब आप मना करते हो लेने के लिए तो कहता है कि ठीक है, आप कुछ दिनों तक सोचिएगा इस बारे में कि हमारा नंबर है और आपका भी नंबर हमें दीजिएगा, अपडेट लेने के लिए हम आपको कॉल करेंगे कुछ दिनों के बाद। वो कहता है कि एक आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, और वहां पर ही भाई सबसे इंपॉर्टेंट गेम खेला जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए हम वो बंदे को नंबर दे देते हैं, हमें लगता है कि भाई सेल्समैन ही, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, आज नहीं कल या परसों हम सोचकर बताएंगे। फिर रजिस्टर करते हैं, और जिस तरीके से फिर एक ओटीपी आता है और ओटीपी वो बंदा मांगता है, और सीधा ओटीपी चला जाता है बैंक में, और उसके बाद जो होता है हम सभी को बताया, अपने बैंक से पूरा के पूरा पैसा खाली हो जाता है। तो ये एक फ्रॉड आजकल अपने शहर में बहुत बढ़ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सेल्समैन फ्रॉड। तो देखो, आपके घर पर बिना तो कोई सेल्समैन आए तो भाई देखिएगा, प्रोडक्ट लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मत शेयर कीजिए। और स्पेशल अगर वो ओटीपी मांग रहा हो ना कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद, तो समझ जाएगा कि भाई ये सरासर फ्रॉड है ही, क्योंकि कोई भी सेल्समैन हो उसे ओटीपी की क्या ही जरूरत, अगर उसे फॉलो अप के लिए नंबर चाहिए तो नंबर लेना भाई, ओटीपी क्यों चाहिए। तो समझ जाएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसे सेल्समैन से थोड़ा बच के रहिएगा। ऐसा मैं भी नहीं, खुद साइबर डिपार्टमेंट कहता है कि ऐसे फ्रॉड अपने शहर में बढ़ रहे हैं। तो बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि सस्ती वाली चीज खरीदने जाओगे तो फिर बड़ा पछताओगे, इसलिए बी सेफ बी केयरफुल, वरना एक ओटीपी से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, समझे?
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology, so MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: Buy one, get one free. Hoi hoi, khara, ek gyan, ek free milwa. Swatantra dinacha khas nimittane Dwargada Shyam Kumar ghyun aale aaye shandar offers.
2: Banarasi satin sari, printed dola sari, designer sari, zamdani silk, kimaya cotton, kiva ladies dress. Tumchi favorite sari, buy one, get one free.
1: Manje style double ani shopping sa anand hi double. Swatantra din sajra kara navya shopping sobat.
2: Dwargada Shyam Kumar, swatantryacha abhiman, natyancha sanman, shandar offer sobat.
1: Hi offer फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार सिडको 9209099991 बीड बायपास रोड 9503109429 त्रिमूर्ति चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765829991
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू आल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in
5: स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन या एडिक्शन क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए
6: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है
5: यहां अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज एडिक्शन ट्रीटमेंट ECT काउंसलिंग मैरिज काउंसलिंग चाइल्ड गाइडेंस स्ट्रेस मैनेजमेंट फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग
6: उत्कर्ष हॉस्पिटल अदालत रोड सिग्नल विवेकानंद कॉलेज रोड सतीश मोटर के पीछे समर्थ नगर छत्रपति संभाजीनगर और दिशा हॉस्पिटल संत तुकाराम नाट्यगृह रोड फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस सिडको N5 छत्रपति संभाजीनगर

जहां देखो वहां पर बस हमें आज के डेट में फ्रॉड नजर आता है। एग्जाम फ्रॉड, खाने का फ्रॉड, पानी का फ्रॉड, पैसों का फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, सब जगह बस फ्रॉड फ्रॉड और फ्रॉड। और आजकल तो भाई रास्तों का भी फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड को लेकर हम सभी लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी हो चुका है। मार्केट में जितने मोबाइल लॉन्च नहीं होते उससे ज्यादा तो फ्रॉड आजकल लॉन्च हो रहे हैं, और वो भी साइबर फ्रॉड दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर ही रहा है ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि एक गलती हमारा पूरा बैंक अकाउंट खाली करवा सकती है, एक क्लिक से पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। और ऐसे केसेस ना तो अपने शहर में भी बहुत सारे हो गए हैं। पिछले 2-4 महीने से ना तकरीबन किसी के अकाउंट से 5 लाख 30 लाख 8 लाख ऐसे रुपए गायब हो गए। गायब मतलब क्या, एक क्लिक के ऊपर से पूरा पैसा खाली होता है। और अक्सर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट अवेयरनेस के जरिए बताते रहते हैं कि यार भाई किसी को भी अपना OTP मत देना, अननोन कॉल पिक मत करना। और हाँ, वो एक मार्केट में चल रहा था फ्रॉड, ऑनलाइन जेल का समथिंग ऐसा नाम था उसका, जिसमें आपको वीडियो कॉल के जरिए कैद किया जाता है। वो टोटली फ्रॉड था। एंड अब ये फ्रॉड इतने बढ़ रहे हैं तो मार्केट में एक और फ्रॉड आ गया है, और ये अपने शहर छत्रपति संभाजीनगर में भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दैट्स कॉल्ड सेल्समैन फ्रॉड। अब एग्जैक्टली सेल्समैन फ्रॉड क्या होता है और इसके शिकार भी कुछ लोग हो गए हैं, तो इसमें एक गलती बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और वो गलती है OTP वाली। और हालांकि ये सेल्समैन फ्रॉड क्या है, किस तरीके से हो रहा है बताऊंगा मैं आपको लेकिन कुछ ही देर में। तब तक के लिए जरा आप भी सोचिएगा कि यार ये एग्जैक्टली सेल्समैन फ्रॉड होता क्या है, मैं तो बताऊंगा, थोड़ा इंतजार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

फिलहाल ट्रैफिक में थोड़ा चेंज किया गया है श्रावण मंथ के लिए। तो बात कुछ ऐसी है कि श्रावण मंथ में कृष्णेश्वर टेम्पल और अपने भद्रा मारुति यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं और इस वजह से ना तो रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए प्रशासन ने ऐसा डिसीजन लिया है कि 13 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक एलोरा और खुल्दाबाद रोड पर हेवी व्हीकल्स के लिए नो एंट्री रहेगी, जैसे ट्रक टेम्पो इन जैसे गाड़ियों के लिए नो एंट्री है। सो जिन हेवी व्हीकल्स को ना तो एलोरा जाना है खुल्दाबाद जाना है तो कन्नड़ और शरणापुर फाटा माड़ीवाड़ा कासाबखेड़ा फाटा इस रूट से वो जा सकते हैं एलोरा या खुल्दाबाद की ओर, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि श्रावण मंथ में ना तो स्पेशली सैटरडे को खुल्दाबाद और मंडे को एलोरा में बहुत क्राउड होता है। इसी वजह से वहां पर ट्रैफिक जाम ना हो, तो लोगों को कुछ परेशानी ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, इस वजह से डिसीजन लिया गया है 13 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक ऐसा रूट चेंज रहेगा। तो यही था ट्रैफिक वाला कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट। स्टे ट्यून्ड।

0: 20 पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार फिडको 9209099991 बीड बायपास रोड 9503109429 त्रिमूर्ति चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991
1: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
2: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
3: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ हैं. साइकेट्रिक्स इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज एडिक्शन ट्रीटमेंट ECT काउंसलिंग मैरिज काउंसलिंग चाइल्ड गाइडेंस स्ट्रेस मैनेजमेंट फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल अदालत रोड सिग्नल विवेकानंद कॉलेज रोड सतीश मोटर के पीछे समर्थ नगर छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल संत तुकाराम नाट्यगृह रोड पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस सिडको N5 छत्रपति संभाजी नगर

0: हमारे हेल्थ से जुड़ी ना तो एक ऐसी बात है जो कि सभी को पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। देखो यार, HPV वैक्सीन के बारे में कहीं ना कहीं तो हम सभी ने सुना होगा। अब एग्जैक्टली क्या है HPV, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा, थोड़ा गलत भी होगा तो आप थोड़ा एडजस्ट करके लीजिएगा। सो खैर, HPV वैक्सीन एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है और इसके कुछ टाइप्स आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसे कैंसर को भी बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन एक गुड न्यूज़ क्या है पता है कि HPV वैक्सीनेशन के थ्रू इसे प्रिवेंट करने में मदद मिल सकती है। जी हाँ, और ये जो HPV वैक्सीन है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब कंपलसरी हो चुका है कि हर लेडीज ने वैक्सीन लेनी ही चाहिए। तो यार, HPV वैक्सीन क्या है, ये किसके लिए रिकमेंडेड है, वैक्सीन लेने के सही उम्र क्या है और इसको लेकर पेशेंट के माइंड में कौन कौन से डाउट और मिथ्स है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर के बाद डॉक्टर धनंजय घुगे सर, कैंसर सर्जन, मराठवाड़ा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो इनसे हम जानेंगे कि HPV वैक्सीन क्यों इम्पोर्टेंट है और तो सर के जरिए हम जानेंगे कि HPV वैक्सीन कितनी इम्पोर्टेंट है। बाय द वे, अगर आपके माइंड में इस वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल हो के तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, सुनते सुनते हमारा इंटरव्यू। सो स्टे ट्यून्ड
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: हर शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है, और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का। हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे से पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है, और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मीडिया और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरा गाँव मेरी धरोहर। स्टे ट्यून
1: All is well with RJ Adnan.

कोई कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, छोटी रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है तो

0: नहीं।
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।